0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे,
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6,
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
4: और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आप

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.

0: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम, सत श्री अकाल। दोस्तों वक्त हो चुका है 10 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। बस वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश, तो लेके आते हैं थोड़ी ही देर में आपका मनपसंद कार्यक्रम।
1: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: हेलो, नमस्कार
3: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
2: मैं पुरुषोत्तम कुमार बोल रहा हूँ, गांव डंडी, तहसील भदरुआ, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से।
3: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: गाना सुनना है चित चोर फिल्म का गाना है, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया प्यारा।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, बनिएगा।
2: धन्यवाद,
3: वेलकम सर।

0: हेलो मैडम, नमस्ते।
1: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम सत्यो मैडम।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: करौली भाटक।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: वो सुना दो, सत्यम शिवम सुंदरम का।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सत्यम शिवम सुंदरम।
1: ओके सर।
2: सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो
1: हेलो
0: सर नमस्ते।
1: जी नमस्ते
0: सर, नाम क्या है आपका?
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ मैं, ग्राम अकबर अकबरपुर तहसील सुरन जिला विदिशा मध्य प्रदेश।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म का नाम है दो जिस्म एक जान। गाने के बोल है हाय रब्बा हाय रब्बा।
0: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडी डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद
0: जी, वेलकम सर।

0: सर नमस्ते।
1: नमस्ते पल्लवी चौधरी, अर्ज कर रहा हूँ आप जी।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना तो बढ़िया लाए।
0: हाँ जी बताइए।
1: घटा सावन की घटा।
0: घटा सावन की हट्टा।
1: जी जी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।

0: जा खड़ी हो गई।
1: हेलो
0: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
1: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तिलुखेड़ा से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: चल बैठ जा बैठ गई, चल खड़ी हो जा खड़ी हो गई।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मेरी बहन।
1: यू वेलकम सर।

0: हेलो
1: हेलो
0: सर, नमस्ते।
1: नमस्ते मैम।
0: सर नाम क्या है आपका?
1: नाम रूपचंद गोयल, जिला बाड़मेर, राजस्थान।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गीत सुनना, पिक्चर का नाम है हिना और गीत के बोल है चिट्ठी नहीं तू ले जा संदेशा याद दा।
0: कौन सा सर, थोड़ा दोबारा बोलना।
1: हिना पिक्चर का है चिट्ठी नहीं तू संदेशा ले जा यार का।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने की।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
0: गुलशन।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: जगदलपुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ताल से ताल मिला।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिएगा ना।

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:30 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें, अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: जी योगेश जांगड़े, बिना तरह छत्तीसगढ़।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: फिल्मन जाहे से सावन के झूलों ने मुझको बुलाया।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: नमस्ते
0: नमस्ते सर, जय भवानी। नाम क्या है आपका?
1: विमल शर्मा।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: वो रामचंद्र के गए सिया से।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।
1: अच्छा ये बताइए, आप क्या पानी पर सफरा है क्या?
0: नहीं सर, अभी तो बारिश नहीं हो रही, थोड़ी थोड़ी हो रही है, बात धीमी धीमी,
1: क्योंकि हम गंगापुर में नहीं, हम कानपुर है ना, इस समय इसलिए पूछ रहे हैं।
0: हाँ जी सर, वो क्या थोड़ा थोड़ा आज थोड़ी वो सुबह दो तीन बूंदे आ रही है, कम कम।
1: बाहर निकल के कह दीजिए ना, तेज तेज आ जाए।
0: अरे बाहर तो सुबह की कह रहेंगे भाई, तेज आ जाए, गर्मी बढ़ रही है।
1: नहीं आ रहा,
0: नहीं आ रहा, आप क्या करे बताओ।
1: अरे उसकी पसंद का एक आधा गाना सुना दीजिए।
0: हाँ जी।

0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्ते दीदी।
1: सर नाम क्या है आपका?
0: गंगाधर सावनकर, कुंडलवाड़ी नांदेड़ महाराष्ट्र से।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आज देखो निकाह फिल्म का।
1: हाँ की बोल सर।
0: दिल के ये आरजू थी कोई दिल रुबा मिली।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: सुना,
0: कौन से बात कर रहे?
1: गंगापुर सुखी संजय कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: गोन गर्ल।
0: कौन सा मैम?
1: गोन गर्ल।
0: गोन गर्ल
1: जी।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: थैंक यू।

कुछ लोगों का कम बैक ही नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो पैडी बोलती है। गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

0: हेलो नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते, क्या है आपका?
0: मैं कश्मीर सोनामर्ग से आपका निमिष होता।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: दिल तो पागल है, लता मंगेशकर की आवाज में।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो टीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर।
2: हेलो, नमस्ते दीदी।
3: नमस्ते, क्या है आपका?
2: मैं कश्मीर सोना मार्ग से आपका निमिष होता
3: हेलो।
4: हेलो,
3: हाँ जी सर, नमस्ते। नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे
4: हैं?
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? कौन सा?

छोटी सी बच्ची थी, ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त। वो हर साल वृंदावन जाया करती। समय बीता, वो थोड़ी बड़ी हुई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। वो और बड़ी हुई, उसकी शादी हो गई, लेकिन वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। यहाँ तक उसके बच्चे भी हो गए, लेकिन वृंदावन जाना नहीं।

0: लगा। अगली बार वृंदावन से
1: गुड मॉर्निंग मैडम।
2: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
1: जी मेरा नाम सुनील सेठी है।
2: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं? जी गंगापुर सिटी राजीव कॉलोनी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैं आज गाना सुनना चाहते हैं, मैं जिस दिन बुलाता हूँ तेरा प्यार दिन से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: आरबी पूजा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: बड़ी अनजानी।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: इस्माहान।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: हेलो।
3: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो पायल जी? कौन सा गाना सुनना चाहोगी? कौन सा?
3: हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: जी नाम क्या है आपका? मीनाक्षी मित्तल।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं
0: मैम?
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
0: कहीं प्यार ना हो जाए।
1: ओके मैम सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए गाना। 89.6 पे
2: रेडियो डीएस सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो
4: दोस्तों वक्त हो चुका है 11:14 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
1: मेरा नाम है मोहम्मद शादाब खान।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: मैं यूपी ईस्ट फरुखाबाद से बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: मैडम मैं धड़कन पिक्चर का गाना सुनना चाहता हूँ।
0: तो किसे सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर? ये गाना रेडियो डीएस में।

0: हम क्या है सर आपका?
1: ये पुष्कनाथ शर्मा बोल रहा हूँ मैं, जम्मू कश्मीर से।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: दीदी ये श्रावण का महीना शुरू हो गया, तो श्रावण वो आया सावन जूम के फिल्म का गाना सुना है दीदी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल कर।
1: दीदी जी आपको भी और सभी श्रोताओं को और अपने अंकल जी को भी मैं अपनी ओर से प्रणाम करना चाहूंगा। जम्मू से केशव शर्मा जी है और हमारी आंटी जी सुषमा रानी जी, उनको मेरी तरफ से प्रणाम और आपको भी नमस्कार और प्रणाम।
0: धन्यवाद सर, नमस्कार।
1: थैंक यू दीदी।

0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: रतनलाल बोल रहा हूँ, महू कला से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैडम आज तो कोई नागिन की बीन सुना दो।
0: नागिन की बीन सर जहाँ तो निकालने आज
1: डोले है तन डोले मेरा मन भूले।
0: ओके सर, सर नागिन की बीन बजा देंगे तो बारिश में नाग देवता निकल आएंगे।
1: अरे अरे मैडम बहुत दिन में दर्शन हुए, कहाँ चले गए?
0: सर थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी इसलिए छुट्टी
1: पे। ऋषि साहब ही ऋषि साहब बोलते
0: हैं। हाँ सर मेरी तबीयत भी खराब चल रही है थोड़ी सी इसलिए।
1: आप तो सही है ना?
0: हाँ सर।
1: चलो भगवान ठीक करे बहुत जल्दी आपको, बहुत जल्दी जल्दी।
0: ठीक है सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
1: ठीक है सर, ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यू वेलकम सर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: रूपा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: भूपेंद्र। वहाँ पे मैं लगा रही थी मौजूद।
1: कौन सा?
0: प्रेम रतन धन पाया।
1: ओके सर, हमारे आपकी फरमाइश पड़ेगा।

0: नाम क्या है आपका?
1: बोलो सैनिक।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना है बातों को तेरी हम बुलाना।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: गौरव मीना
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: मैं हूँ वो खिलाड़ी।
2: ओके तो सुना रहे आप, जी फरमाइश करिएगा।

0: हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नाम क्या है आपका?
1: रोहित।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: मस्त नजरों से अल्लाह।

0: मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग सर, हम क्या है आपका?
0: मैम मेरा नाम है अयूब सलमानी।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
0: सूलीगढ़ रंगापुर सिटी से।
1: कौन सी मछली बात कर रहे
0: हैं? मैम आज गाना सुनना चाहते हैं औलाद वालों फूलों फलों।
1: कौन सा सर?
0: औलाद वालों फूलों फलों।
1: ओके सर, मैं आपकी कर दूँगा।

0: बंद करो, ये रात बंद करो बाबा।
1: ये गाना यहां मत गाया करो, इन दीवारों से टकरा कर तुम्हारी दुआएं लौट जाएंगी। इस घर में ये फलने फूलने वाली नहीं है। अपनी दुआएं जाया ना करो बाबा, ये लो।

0: ये चमत्कार बॉबी ने किया है डॉक्टर। इस अंधेरे घर को इसने उजालों से भर दिया है। अब मैं जीना चाहता हूँ।
1: भूखे गरीब की
0: बाबा जी
1: यही दुआ।
0: बहुत दिनों के बाद आए।

0: बाबूजी क्षमा करना, भूल हो गई, अब नहीं गाऊंगा।
1: क्यों नहीं गाओगे? जरूर गाओगे बाबा, रोज रोज गाओगे। बाबा तुम्हारी दुआएं इस घर को रास आ गई।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: जी आदरणीय आरजे पलक बहना जी को मेरा प्यार भरा प्रणाम प्रणाम।
2: सर प्रणाम। सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
1: गाना सुने

0: अरे फरमाइश करिएगा ना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। मैं राजू यादव ग्राम प्रियंका श्री राम पडेरा सरीला राठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
0: ओके सर सुना रहे आपकी फरमाइश करिएगा ना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। नमस्कार।

0: हेलो,
1: दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड।
2: हेलो
0: सर, नमस्ते।
2: सत्यकाल जी।
0: सत्यकाल सर, नाम क्या है आपका?
2: मैं मेरा नाम गीता सिंह मान, मातरोड तलवंडी चाबोर डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब।
0: हां जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: मैं आज मैंने कोई कृपा करके मोहम्मद सदीक ते रणजीत कौर जी का गाना सुनाने कोई।
0: कौन सा सर?
2: मोहम्मद सदीक ते रणजीत कौर।
0: सर को समझ में नहीं आ रहा।

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है आपका?
0: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या है आपका?
0: अजीत शर्मा।
1: कहाँ से बात कर रहे सर?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आंखें फिल्म का, देशभक्ति की पुरानी आंखें फिल्म।
1: तो कुछ सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या आपका?
0: मेरा नाम रोगन कुमार है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: मदीना मस्जिद से।
1: सुनना चाहोगे?
0: मैं बताऊँ साहब, जब जब मुझको बता रहे

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम है क्या आपका?
0: कोमल।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मन्ने जयपुरी हरी शेर करा दे बरतार।
1: ओके मैम, सुना रहा हूँ, आपकी फरमाइश करेगा।

0: मेरा नाम रेखा है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर? मैम
0: गंगापुर मिर्जापुर से बात कर रहे हैं।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
0: शीशे का सा दिल मेरा।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: निकिता।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? रेलवे स्टेशन।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ताल से ताल मिले।
0: मन चल चुका है, ये गाना नहीं चलेगा। चल ही रही आ रही।
1: चल रहा है,
0: चल रहा है।
1: दूसरा लगा दे।
0: कौन सा बताऊँ?
1: जाट के ले आ
0: रही। एक ही नाम सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।
2: दोस्तों, वक्त हो चुका है 12:28 का। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
3: मेरा रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया है। तुम मेरे घर वालों को पसंद नहीं हो।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। यहाँ
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 12:32 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों कार्यक्रम की लास्ट में अंतिम फरमाइश हमारे पास आई है अलवर से हमें कॉल किया है पूजा शर्मा जी ने। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
3: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है, एक बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजी पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाई। सब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहे तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: तेरह सौ तीन ईस्वी राजस्थान की तपती धरती पर खड़ा था चित्तौड़ का विशाल दुर्ग, एक ऐसा किला जिसे जीतना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन जल्द ही दिल्ली सल्तनत की सबसे शक्तिशाली सेना इसकी ओर बढ़ रही थी। उस सेना का नेतृत्व कर रहा था अलाउद्दीन खिलजी, और इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रही थी एक ऐसी कहानी जिस पर आज भी बहस जारी है। क्या रानी पद्मावती सचमुच थी? क्या खिलजी ने उनकी सुंदरता के कारण चित्तौड़ पर हमला किया था, या यह सिर्फ एक महाकाव्य की कल्पना थी? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इतिहास, किंवदंती और तथ्यों की परतों को हटाकर जानेंगे रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी की पूरी कहानी। 13वीं शताब्दी का भारत। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का विस्तार तेजी से हो रहा था। तुर्क और अफगान शासक एक एक करके नए क्षेत्रों पर कब्जा कर रहे थे। दिल्ली की सत्ता अब केवल एक शहर तक सीमित नहीं थी, यह एक विशाल साम्राज्य बनती जा रही थी। इसी समय राजस्थान के राजपूत राज्य अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण था चित्तौड़। अरावली की पहाड़ियों पर स्थित यह किला केवल एक दुर्ग नहीं था, यह राजपूत गौरव का प्रतीक था। सैकड़ों फीट ऊंची पहाड़ी पर बना यह किला दुश्मनों के लिए एक दुस्वप्न था, और इसकी रक्षा कर रहा था मेवाड़ का शासक रतन सिंह। लेकिन इतिहास के क्षितिज पर एक नया तूफान उठ चुका था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जन्म किसी राजा के रूप में नहीं हुआ था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा किसी साधारण व्यक्ति जैसी नहीं थी। वह सत्ता चाहता था, धन चाहता था, और सबसे बढ़कर वह चाहता था इतिहास में अमर होना। 1296 में उसने अपने ही चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। इसके बाद शुरू हुआ विजय अभियान। गुजरात, रणथंभौर, मालवा, एक एक करके कई राज्य उसके अधीन आते गए। उसकी सेना विशाल थी, उसकी रणनीति घातक थी, और उसका लक्ष्य स्पष्ट था, पूरे उत्तर भारत पर नियंत्रण। लेकिन उसके सामने अभी भी एक चुनौती थी, चित्तौड़। अब हम उस पात्र की बात करते हैं जिसके बिना यह कहानी अधूरी है, रानी पद्मावती। कहा जाता है कि वह सिंहल द्वीप यानी वर्तमान श्रीलंका की राजकुमारी थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या पद्मावती वास्तव में थी? इतिहासकारों को उनके अस्तित्व का समकालीन प्रमाण नहीं मिलता। उनका सबसे प्रसिद्ध उल्लेख 1540 में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत में मिलता है। यह घटना के लगभग 237 साल बाद लिखा गया था, यानी कहानी और इतिहास के बीच एक बड़ा अंतर मौजूद है। फिर भी भारत की लोक कथाओं में पद्मावती का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यहीं से शुरू होती है वह कथा जिसे करोड़ों लोग जानते हैं। कहा जाता है कि हर महान कथा की शुरुआत एक रहस्य से होती है, और पद्मावती की कहानी भी एक रहस्य से ही शुरू होती है। हिंद महासागर के बीचों बीच एक द्वीप था, सिंहल द्वीप, आज जिसे हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं। लोक कथाओं के अनुसार यहीं जन्मी थी पद्मावती। राजा गंधर्व सेन की पुत्री, असाधारण रूप से बुद्धिमान, अत्यंत साहसी और इतनी सुंदर कि उनकी चर्चा दूर दूर के राज्यों तक पहुंच चुकी थी। लेकिन पद्मावती की कहानी में एक और पात्र था, एक ऐसा पात्र जो देखने में छोटा था लेकिन जिसने इतिहास की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक को जन्म दिया, एक तोता। उसका नाम था हिरामन। कहा जाता है कि हिरामन कोई साधारण तोता नहीं था, वह मनुष्यों की तरह बात कर सकता था। राजमहल में उसका विशेष स्थान था, और पद्मावती उसे अपना सबसे प्रिय मित्र मानती थी। दिन बीतते गए, राजकुमारी युवावस्था में प्रवेश कर चुकी थी। अब पूरे राज्य में एक ही चर्चा थी, उनका विवाह किससे होगा। राजा गंधर्व सेन चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह किसी योग्य राजकुमार से हो, लेकिन पद्मावती के लिए कोई भी वर पर्याप्त नहीं लगता था, क्योंकि वह केवल शक्ति नहीं, चरित्र और साहस भी देखती थी।

पति हीरामन से अपने भावी पति के बारे में चर्चा कर रही थीं। तभी राजा ने यह वार्तालाप सुन लिया। उन्हें लगा कि यह तोता उनकी पुत्री पर अत्यधिक प्रभाव रखता है। क्रोधित होकर उन्होंने आदेश दिया कि हीरामन को मार दिया जाए, लेकिन पद्मावती ने अपने प्रिय मित्र को बचा लिया। फिर भी हीरामन समझ चुका था कि अब महल में उसका रहना सुरक्षित नहीं है, और एक रात वह उड़ गया। उसे नहीं पता था कि उसकी यह उड़ान आने वाले समय में हजारों लोगों की नियति बदल देगी। हीरामन समुद्रों और जंगलों के ऊपर उड़ता रहा दिनों तक, सप्ताहों तक, लेकिन अंततः वह एक शिकारी के जाल में फंस गया। उसके बाद उसे बाजार में बेच दिया गया। वहां उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। ब्राह्मण ने उसकी बुद्धिमत्ता देखकर उसे खरीद लिया, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय बाद वह ब्राह्मण चित्तौड़ पहुंचा, और वहीं हीरामन पहली बार उस व्यक्ति से मिला जो आगे चलकर पद्मावती का पति बनने वाला था, राजा रतन सिंह। रतन सिंह मेवाड़ के शासक थे, वीर योद्धा, कुशल प्रशासक और राजपूत परंपराओं के कट्टर समर्थक। एक दिन उन्होंने उस अद्भुत तोते को देखा। जब उन्होंने हीरामन से बातचीत की तो वे उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो गए। उन्होंने उसे खरीद लिया। अब हीरामन चित्तौड़ के महल में रहने लगा। लेकिन एक दिन बातों बातों में उसने सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती का वर्णन करना शुरू किया। उसने उनकी सुंदरता की चर्चा की, उनकी बुद्धिमत्ता की, उनके साहस की और उनके व्यक्तित्व की। रतन सिंह मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। जितना अधिक वह सुनते उतना ही उनके मन में एक इच्छा जन्म लेने लगी, पद्मावती से मिलने की इच्छा। धीरे धीरे यह इच्छा प्रेम में बदल गई, एक ऐसे व्यक्ति के प्रति प्रेम जिसे उन्होंने कभी देखा भी नहीं था। कुछ ही दिनों बाद रतन सिंह ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने सिंहल द्वीप जाने का निश्चय किया। उनके मंत्रियों ने विरोध किया, सैनिकों ने समझाया। यह यात्रा अत्यंत खतरनाक थी। हजारों किलोमीटर दूर स्थित एक द्वीप, अनजान समुद्री रास्ते, अज्ञात शत्रु, लेकिन रतन सिंह का निर्णय अटल था। उन्होंने अपने विश्वस्त साथियों को साथ लिया और यात्रा शुरू कर दी। कई महीनों तक वे जंगलों, पहाड़ों और समुद्रों को पार करते रहे। अंततः वे सिंहल द्वीप पहुंच गए, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती सामने थी, राजकुमारी तक पहुंचना। कहानी के अनुसार रतन सिंह ने स्वयं को एक साधारण योगी के रूप में छिपा लिया। वे महल के आसपास रहने लगे और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। दिन बीतते गए, फिर एक दिन वह क्षण आया। उन्होंने पहली बार पद्मावती को देखा। लोक कथाएं कहती हैं कि उसी क्षण उन्हें विश्वास हो गया कि हीरामन ने उनकी सुंदरता का जो वर्णन किया था वह भी कम था। लेकिन पद्मावती तक पहुंचना आसान नहीं था। राजमहल की सुरक्षा अभेद्य थी, और राजा गंधर्व सेन किसी अजनबी को अपनी पुत्री के निकट नहीं आने देना चाहते थे। इसलिए रतन सिंह को केवल प्रेम ही नहीं, अपनी योग्यता भी सिद्ध करनी थी। कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियां तलवारों से नहीं बल्कि विश्वासघात से शुरू होती है। सिंहल द्वीप। रतन सिंह अब वहां पहुंच चुके थे, लेकिन राजकुमारी पद्मावती तक पहुंचना अभी भी आसान नहीं था। कहानी के अनुसार उन्होंने कई दिनों तक स्वयं को एक साधु के रूप में छिपा कर रखा। फिर एक दिन भाग्य ने उनका साथ दिया। राजमहल में एक धार्मिक आयोजन हो रहा था। वहीं पहली बार पद्मावती और रतन सिंह आमने सामने आए। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि पद्मावती पहले से ही उनके साहस और व्यक्तित्व के बारे में सुन चुकी थीं। दोनों के बीच बातचीत हुई और धीरे धीरे एक दूसरे के प्रति सम्मान और आकर्षण पैदा हुआ। लेकिन यह प्रेम कहानी इतनी आसान नहीं थी। राजा गंधर्व सेन अपनी पुत्री का विवाह किसी अज्ञात व्यक्ति से नहीं करना चाहते थे। उन्होंने रतन सिंह की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। कहानी के विभिन्न संस्करण अलग अलग बातें बताते हैं। कुछ कहते हैं कि रतन सिंह को युद्ध कौशल सिद्ध करना पड़ा, कुछ कहते हैं कि उन्हें बुद्धिमत्ता और साहस की परीक्षा देनी पड़ी। लेकिन हर कथा का निष्कर्ष एक ही है, रतन सिंह सफल रहे। उन्होंने स्वयं को एक योग्य राजा और योद्धा सिद्ध कर दिया। अब राजा गंधर्व सेन के पास विवाह स्वीकार करने के अलावा
कोई विकल्प नहीं था। और फिर सिंहल द्वीप में एक भव्य विवाह संपन्न हुआ। राजकुमारी पद्मावती अब मेवाड़ की रानी बनने जा रही थी। विवाह के बाद रतन सिंह और पद्मावती चित्तौड़ लौटने लगे। समुद्र की लहरें, लंबी यात्रा और नए जीवन के सपने, सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि भविष्य में उनका नाम इतिहास की सबसे चर्चित कथाओं में शामिल होने वाला है। चित्तौड़ पहुंचने पर पूरे राज्य ने अपनी नई राह

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डॉक क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
1: वक्त हो चुका है 2:00। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नए तराने। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली बिसरी याद 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ DS इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक JEE एंड NEET। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।

0: बीएस कर रहा।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है, 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:44 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ DS इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डॉक क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक JEE एंड NEET। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।

0: एफडीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुका है 4:00। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का, आप थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों, हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू हो चुकी है। आप कॉल कर अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: तो वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश लेके आ रहे हैं थोड़ी ही देर में आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश।

0: हेलो, जय भवानी।
1: जय भवानी मामा जी, नाम क्या है आपका?
0: विमल शर्मा, मऊकला, गंगा पुपिटी, राजस्थान।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: सुनरी पवन, पवन पुरवैया।
1: ओके जी, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा ना।

0: सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। कौन सा? हेलो
1: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पिलुखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: तेरी पलकों में काजल।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: नमस्ते, नाम क्या है आपका?
1: जी आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से आदरणीय पलक दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ रेडियो डीएस पर।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ऋतु है मिलन की, अरे मेरे साथी, ये गीत सुना दीजिए रेडियो डीएस पर।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।
0: नमस्ते सर।

0: जी नमस्ते।
1: हाँ नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: ये ठंडीराम गुजर बोल रहा हूँ, गांव भद्रका से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: सर गाने के बोले हैं, सामने है नजर, नजर आती नहीं।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मैं नाम प्रीति है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: सिंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: कमर डीजे पे मटकी थी।
0: कौन सा?
1: कमर डीजे पे मटकी थी।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: विनीता बोल रहे।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
2: दिया और बाती।
1: दिया और बाती।

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:49 का। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।

0: हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम अजीत सलमानी।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मैं गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: आज गाना सुनना चाहते हैं हम, तुम पिक्चर देख रहे हो किसी थिएटर के अंदर।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: हिमांशु।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? राजस्थान करौली।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: चांदनी।
0: वो किसे सुना रहे हैं? आपकी फरमाइश करें।

0: लूँगा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: मैं
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी? हाँ जी नानी को पता है ना,
0: गाना तो ऐसा ही है, बदमाशी वाला ही है, मतलब ऐसा नहीं है।
1: ओके सर,

0: मोर नहीं बल्कि मैं।
1: हेलो,
0: तो
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मोनिका।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: रेलवे कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुन रहे हो?

0: जी नाम क्या है आपका?
1: मैं जमीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जीने लगा हूँ।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.

डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।

0: परीक्षा का समय आ गया है और इस वक्त पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता। मैं हूँ आरजे खुशी। जब मैं स्कूल में थी ना, तो इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा नींद आया करती थी और मैं समझ सकती हूँ उन सभी स्टूडेंट्स की बात जो कहते हैं कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा नींद आती है, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता है। देखो, ये बात तो ठीक है कि सर्दियों में इस टाइम पे बहुत नींद आती है, बहुत आलस आता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिस तरीके से हम खुद को संभाल पाए। तो सबसे पहली चीज ये कि कोशिश करें कि सूरज में जरूर बैठे। कई बार ये विटामिन डी की कमी से भी हो जाता है, तो अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे, डेली सूरज के नीचे बैठेंगे, तो आधी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आपको आलस बहुत ज्यादा आता है, तो दो चीजें हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए। एक तो दिन के वक्त आपको नहीं सोना है, और दूसरी चीज, अगर आप ज्यादा खाना खा रहे हैं तो भी ये परेशानी आपको हो सकती है। और एक इससे भी जरूरी चीज, हम लोग सर्दियों में पानी पीना भूल जाते हैं। अगर आपने इतनी चीजें कर ली ना, तो आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा सर्दियों में। मैं हूँ आरजे खुशी, लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सर्दियां पसंद तो सबको होती है क्योंकि अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, लेकिन इन्हीं सर्दियों से लोग परेशान होते हैं डैंड्रफ की वजह से। मैं हूं आरजे खुशी। अगर आप भी परेशान हो चुके हैं ना डैंड्रफ से, तो कुछ चीजें जो आप अपना सकते हैं। देखिए, आंवला, जिसके बारे में मैं बार बार बात करती हूँ, वो इसलिए ताकि आप आंवले को अपना लें अपने जीवन में। आंवले का जो तेल है वो पूरी तरीके से डैंड्रफ हटाने में मदद करता है। एक और चीज, हम लोग सर्दियों में क्या नहाना थोड़ा सा कम कर देते हैं, और सर्द होके नहाना तो बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। लेकिन अगर आपने वॉश बार बार नहीं किया ना सर को, तो डैंड्रफ जमा रह जाएगा। इसलिए कहा जाता है एक दिन छोड़ के एक दिन आपको सर धोना ही चाहिए सर्दियों में। एक और बात, हम लोग नहाने के लिए सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गर्म पानी हम जैसे ही अपने सर में डालते हैं ना, तो ये डैंड्रफ को बढ़ावा देता है। इसलिए सर में अगर आपको पानी डालना है तो गुनगुना पानी लें, एकदम गर्म पानी कभी भी सर में ना डालें। इन टिप्स को फॉलो करें और सर्दियों को खुल के एंजॉय करें। मिलूंगी कल इसी पते पर इसी समय पर। मैं हूँ आरजे खुशी।

0: सर्दियाँ सबको बहुत पसंद है, लेकिन सर्दियों में खुद का ध्यान रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं हूँ आरजे खुशी, और अगर बात करें स्पेसिफिकली बालों की, तो बालों का ध्यान रखना सर्दियों में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। डैंड्रफ बहुत जल्दी हो जाता है सर्दियों में, लेकिन आपको चिंता वाली कोई बात नहीं है। आपको बाजार से कुछ नया खरीद कर नहीं लाना है, मैं आपको वो चीजें बताने वाली हूँ जो आपके घर में ही मौजूद हैं और आपकी डैंड्रफ को पूरी तरीके से आपके सर से हटा देंगी। जैसे कि आपके घर में जो नारियल का तेल है ना, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़े और अपने बालों में लगा ले। थोड़ी देर लगा कर रखे और 30 मिनट बाद यानी कि आधे घंटे के बाद अपने बाल धो ले। आपके बालों में से डैंड्रफ काफी हद तक चला जाएगा। इसको आप 2-3 बार महीने में रिपीट करें और फिर आप देखेंगे कि आपका जो डैंड्रफ है वो पूरी तरीके से जा चुका है। और अगर आपके घर में नीम है तो उसको महीन घिस कर भी अपने बालों में लगा सकते हैं, ये भी आपके सर से डैंड्रफ पूरी तरीके से साफ कर देगा। सुनते रहिए, मैं हूँ आरजे खुशी।
1: 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: कहते हैं जैसा हम दुनिया को देखना चाहते हैं ना, दुनिया वैसी ही हमें दिखाई देती है। मैं हूँ आरजे खुशी। नया दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हर दिन मैं अपने आप में छोटे छोटे बदलाव करने की कोशिश करती हूँ, ताकि साल भर में, महीने भर में, हफ्ते भर में कुछ बड़े बदलाव अपने अंदर ला सकूं। और मैं जानती हूँ मेरे साथ साथ आप भी अपने आप में थोड़े थोड़े बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने एक ग्रंथ में पढ़ा था कि अगर हम दूसरों में बुराई देखने के बजाय अच्छाई देखनी शुरू कर देना और इस आदत को बना ले कि जिनसे भी मिले उन सब में अच्छाई देखने की कोशिश करें, तो हमारे साथ भी जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। आप गौर करेंगे तो आप भी यही देखेंगे कि लोग दूसरों में बुराई देखते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारा जीवन खराब है, हमारे जीवन में तो ये नहीं है, खुशी नहीं है। और जिस दिन से आपने लोगों में अच्छाई देखनी शुरू कर दी ना, उस दिन से वाकई में आपके आसपास की चीजें भी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इस बदलाव के साथ में आज सुबह की शुरुआत करते हैं। सुनते रहिए, मैं हूँ आरजे खुशी।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुन सुनाकर पढ़ पढ़ाकर ये तो पता चल गया है कि तली हुई चीजें खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मैं हूँ आरजी खुशी, लेकिन हम ना चाह कर भी ये तली हुई चीजें खाना अवॉइड नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं तो खा ही लेते हैं, घर में मेहमान आते हैं तो बना ही लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आपने थोड़ा सा तेल लिया और उसमें आपने कुछ भी तला। मान लीजिए कि आपने आलू तले या आपने पूड़ियां बनाई, अब बहुत सारा तेल बच गया। अब क्या करें? उस तेल में वापस से नया तेल डालेंगे और फिर से काम शुरू कर देंगे, या उस तेल को रख देंगे साइड में और जब जरूरत होगी वापस इस्तेमाल कर लेंगे। तेल को बार बार गर्म करना और उसमें चीजें पकाकर खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। इसलिए तेल का इस्तेमाल उतना ही करें जितना हमारे लिए जरूरी है। और अगर बाय चांस आपने ज्यादा तेल ले लिया है तो उस तेल को आप साइड में रख लें और एक दो दिन से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, वो भी केवल सब्जी बनाने में। ध्यान रहे, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए तेल को बार बार गर्म ना करें। सुनते रहिए।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DX 89.6
1: पसंद
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: पसंद
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: करते हैं
1: गंगापुर सिटी की धरतर
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
1: बिल्कुल आती है, सुनो।
0: सुना।
1: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।